0: दशमपाह अनुतुनाय दशमहत लखंड रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकीय हंड
1: विलापस रेखाए
2: विलाव ओपवेत किन आवे
3: वार्ता पिट वार्ता कबनी कोटी अटे एनएलबी दानडे तहने लुतराईन प्रति संवर्धनेट तनंत शक्तियक वेमिन ओबा दिनवा रटा दिनवट दान निदाने बिलदीगेन ओबा कोटीपतिय कुवन

0: දැනෙන තැන ඔහොමම නවතින්න. All time beats with
1: Jami.
2: जब से तुझे देखा दिल को कोई आराम नहीं.
0: साथ ये दिनवन एक ही दांत हाथ रखने का. All time beats with Jami.

0: श्रीमान उतुनाई दशमा पहा अनुतुनाई दशमा हाता लखांडे रेडियो आईटीएन सबे श्रीलंकिया हांडे
1: विलाव सौजत तुनाई
2: विलाव ओपवेत किन्ह आवे
3: वार्ता पिट वार्ता तबन कोट याते एनएल बी धन निधान ये लुप्राईये प्रति संवर्धने तक तैनंत शक्तियक्विमिन ओबाद दिन वार रटा दिन वटो धन निधाने बिल्डिंग के ओबाद कोटि पच्चे कुवन

ऐसी सहमती शांति उदिशा में उतुम पिरित सज्जायने कुट बताले पाणतुर गंगुल श्री परम विशुद्धारामाधिपति वैदसेट अपत्वि बताल प्रवचन कीर्ति श्री सरबन्य विशारद पूज्यपाद मिगस्वे सोमरतन स्वामी महा